कबाड़ी बना हूँ। सीढ़ी सीढ़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सीढ़ी सीढ़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सीढ़ी सीढ़ी की हाना जजा खानी नी दियोगा की जाबुनी हाना जजा उखानी।